धुमधाम राती धुमधाम राइड सपन नयाँ इजी मेरो टियागो इजीसँग लाइफ छ सुपर फन Elders love it, so do the young. It's safe, it's playful, get the fun. Go.

साथी धुमधाम राइड सपन नयाँ इभी मेरो टियागो इभीसँग लाइफ छ सुपर फन Elders love it, so do the young. It's safe, it's safe.

जाम कति धुमधाम राइट तपन नयाँ इभी मेरो टियागो इभीसँग लाइट छ सुपर फन. Elders love it, so do the young. It's safe, it's playful, get the fun, go.